मुझमायाम बाप कर गए हम दूसरी से मर गया मायाम बाप कर गए मुझर कंट्रोल फाल अगली जे मरिया

कदम माजो भर गए मामची गर्मी वार आया मिनट गर्मी दिपे मामम अगर दुखा दर समाज